दे रही है ना रिश्तों की वो मीठी सी आवाज, कुछ रसगुल्लों की मिठास, कुछ बचपन की यादें। आप सभी प्यारे श्रोताओं को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव सहमति होने पर हिंसा और अपराध वृत्ति का अभाव होगा तथा हर तरफ मंगलमय वातावरण निर्मित होगा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, घर घर की आवाज, रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये है रेडियो विस्तार, हम सफर जिंदगी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत के पर्व और आज हम बात करेंगे भाई बहन के पर्व यानी रक्षाबंधन की। मैं रेडियो सखी किरणी इस सफर में आपके साथ रहूंगी। ये आज का कार्यक्रम उन वीर जवानों को समर्पित है जो इस समय देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उनको और सारे देशवासियों को रेडियो विदस्ता की ओर से और मेरी ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी रक्षाबंधन।

रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो रक्षा प्रदान करता हो। रक्षाबंधन के दिन बहनों के चेहरों पर खुशी झलकती है। भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, किसी के शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है।

भाई और बहन की बॉन्डिंग पूरी तरह से यूनिक होती है। भारत जिसको संस्कृतियों की भूमि भी माना जाता है, वही तो इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दी गई है। इसकी इतनी ज्यादा महत्व है कि इसके एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है।

इस त्योहार में भाई बहन के प्यार को एक ट्रेडिशन की तरह मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक स्पेशल हिंदू त्योहार है जिसे कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में जैसे कि नेपाल में भी भाई बहन के प्यार का प्रतीक मानकर खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व रक्षाबंधन को श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। इस मौके पर एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। वही वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वही भाई भी अपनी बहन के बदले में कई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतीक्षा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपनी बहन की रक्षा हमेशा करेगा। साथ में वो भगवान से अपनी बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की भी मनोकामना करता है।

राखी का जो फेस्टिवल है वो पुराने जमाने से ही हमारे भारत में मनाया जाता है। राखी त्योहार की सबसे पुरानी कहानी सन 300 BC में हुई थी, उस समय जब अलेक्जेंडर ने भारत जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आया था। उस समय भारत में सम्राट पूर्व का काफी बोलबाला था, जहाँ अलेक्जेंडर ने कभी किसी से भी नहीं हारा था। उन्हें सम्राट पूर्व को सेना से लड़ने में काफी दिक्कत हुई। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला, तब उन्होंने सम्राट पूर्व के लिए एक राखी भेजी थी जिसे वो अलेक्जेंडर को जान से न मार दे। वही पूर्व ने भी अपनी बहन का कहना माना और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया था। एक और कहानी है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था। अपनी राज को बचाने के लिए राखी उस समय भी प्रचलित थी, जिसमें भाई अपने बहनों की रक्षा करता है। उस समय चित्तौर की रानी कर्णावती हुआ करती थी, वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजा उनकी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा के हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौर भेज दिया, जिसके बाद में बहादुर शाह को सेना को पीछे हटना पड़ा था।

एक और कहानी है इंद्रदेव जी की। भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बाली ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, तब देवताओं के राजा इंद्र को काफी नुकसान पहुंचा था। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सच्ची से रहा नहीं गया और वो विष्णु जी के करीब गई इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तब प्रभु विष्णु ने एक धागा सच्ची को प्रदान किया और कहा कि वो इस धागे को जाकर अपने पति के कलाई पर बांध दे। और जब उन्होंने ऐसा किया तब इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राजा की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज से परेशान होने लगी क्योंकि विष्णु जी अब और वैकुंठ पर नहीं रहते थे। अब लक्ष्मी

जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वही बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को ये नहीं पता था कि वो औरत और कोई माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दिया। इस पर माता बलि ने विष्णु जी को उसके साथ चलने के लिए कहा और उसने अपनी राखी की लाज रखी। महाभारत में भी राखी की बहुत ज्यादा महत्व है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये सलाह दी कि महाभारत की लड़ाई में खुद को और अपनी सेना को बचाने के लिए उन्हें राखी का जरूर से उपयोग करना चाहिए युद्ध में जाने से पहले। इस पर माता कुंती ने अपनी नाती के हाथों में राखी बांध दी थी, वही द्रौपदी ने कृष्ण के हाथों राखी बांध दी थी। आइए सुनते हैं एक प्यारा

भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने के लिए जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश जी को संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा। अपने शक्ति का उपयोग कर वही एक मौका रक्षण बंधन ही था जब दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त हुई। हिंदू धर्म में ये त्योहार काफी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है, वही इसे भारत के उत्तरी प्रांत और पश्चिमी प्रांतों में ज्यादा मनाया जाता है। इसके अलावा भी दूसरे देशों में भी इसे मनाया जाता है, जैसे कि नेपाल मॉरिशस में भी मनाया जाता है। जैन धर्म में उनके जैन पंडित भक्तों को पवित्र धागा प्रदान करते हैं। सिख धर्म में भी इसमें भाई और बहन के बीच मनाया जाता है, वही इसे रखड़ी या रखरी कहा जाता है। ग्रंथों में देखें तब आप पाएंगे कि रक्षाबंधन को पुण्य प्रदायक माना गया है। इसका मतलब कि इस दिन अच्छे कार्य करने वालों को काफी सारा पुण्य प्राप्त होता है। रक्षाबंधन को विष्क तारक का विषक नाशक भी माना जाता है, वहीं इसे पाप नाशक भी कहा जाता है जो कि खराब कामों को नाश करता है। कच्चे धागों से बनी पकी डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र धुआं है राखी। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता है, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। मेरी तरफ से और रेडियो विस्तार की तरफ से आप सबको एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह है रेडियो विदस्ता।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोर्टल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपुई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंगमंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये व्यथ थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। कार्यक्रम रंगमंच की ओर में तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर सिर्फ रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हर जज्बा का पर्दा उठे, हंसी के साथ आंसू भी एक मंच पे आ मिलते, सपने जैसे जिंदा होते जब कलाकार।
2: जाने मन, कभी आपने सोचा है कि किरदार का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? कपड़े बदलने से, आवाज भारी करने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से? नहीं, आज हम बात करेंगे विजय आनंद साहब की एक खूबसूरत फिल्म गाइड की और समझेंगे कि एक अभिनेता रोल नहीं निभाता, वो एक जीवन जीता है। जी, इस फिल्म में देवानंद साहब का किरदार शुरुआत में थोड़ा हल्का है, चुस्त, आत्मविश्वासी और थोड़ा सा चालाक भी है। वो दुनिया को संभालता हुआ लगता है, लेकिन कहानी आगे बढ़ती और धीरे धीरे उसके भीतर की जमीन खिसकती चली जाती। यहीं से असली अभिनय उसकी शुरुआत होती है। ध्यान से देखिए, पहले हिस्से में देव साहब की चाल थोड़ी तेज है, बात करने की गति तेज है, आंखों में चमक है, और अंतिम हिस्से में चाल धीमी हो जाती, शब्द कम हो जाते, आंखें स्थिर हो जाती, स्टेबल हो जाती। यह बदलाव अचानक नहीं आता है, ये एक बहाव के साथ आता है। यही पहला सबक है। ट्रांसफॉर्मेशन अचानक से नहीं होता है, वो धीरे धीरे उतरता है। अगर आप एक ही दृश्य में पूरा परिवर्तन दिखा देंगे तो ये अभिनय लगेगा, जीवन नहीं। दूसरी बात, इस फिल्म का नायक परफेक्ट नहीं, वो गलती करता है, वो स्वार्थी है और वो महत्वाकांक्षी है, और यहीं पर अभिनय की परीक्षा होती है। जब आप किसी किरदार को गलत मान लेते हैं तो आप उसे निभाना नहीं, सही साबित करना शुरू कर देते हैं, और यही अभिनय झूठा हो जाता है। गाइड हमें सिखाती है, किरदार को जज मत कीजिए, उसे समझिए, उसके भीतर का तर्क सोचिए। अब बात करते हैं आखिरी हिस्से, जहां किरदार एक आध्यात्मिक प्रतीक बन जाता है। ऐसे दृश्य अक्सर ओवर एक्ट हो जाते हैं, एक्टर ओवर एक्टिंग करने लगता है, क्योंकि अभिनेता गंभीर दिखना चाहता है। लेकिन यहां देव साहब गंभीर देखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते, वो शांत हो जाते। और याद रखिए, शांति अभिनय का सबसे कठिन रूप है। जब आप स्थिर खड़े होते हैं तो कैमरा आपकी हर सोच पढ़ सकता है, इसलिए स्थिरता सिर्फ बाहरी नहीं हो सकती, वो भीतर से आनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, इस फिल्म का ग्राफ शुरुआत से अंत तक किरदार का भावात्मक तापमान बदलता रहता है। एक अभिनेता को पूरी कहानी का नक्शा दिमाग में रखना चाहिए, वरना हर दृश्य अलग अलग ऊर्जा में बिखर जाए। तो अब अभ्यास की बात की जाए। अभ्यास के लिए अपने किसी भी किरदार को लीजिए, उसकी शुरुआत लिखिए, उसका अंत लिखिए, फिर बीच के पांच पड़ाव तय कीजिए। यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। गाइड अंत में यह सवाल नहीं पूछती कि नायक संत था या धोखेबाज, वो पूछती है क्या मनुष्य बदल सकता है, और अभिनेता का असली सवाल यह है क्या वो हर किरदार के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि अभिनय नकल नहीं, वो परिवर्तन है। इस फिल्म को सिर्फ क्लासिक कहकर मत छोड़ना, उसे देखना और जरूर देखना, और बार बार पॉज करके देखना और अपने भीतर के बदलाव को महसूस करना। अब कमेंट में लिखिए कि गाइड का कौन सा चरण आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, क्योंकि जो कठिन लगे वही आपकी असली ट्रेनिंग है। नहीं

वास्तव में जीवन चलना है, ढलना है, जलना है, रूहों का सफर है, इनके साथ जन्म जन्म के रिश्ते बंधे हैं, कोई चला गया तो कोई जाने की तैयारी में है, समा है 100 बरस का पर पल भर की खबर नहीं।

क्यों तुम याद आते हो अक्सर इस खामोशी में। जमाने बीत गए, बदलते रहे मौसम, चांदनी रातों में चिनारों की ठंडी छांव तले आंखों में बसते हैं ख्वाब, और कभी इन ख्वाबों की ताबीर हुआ करते थे आप, पर बिछड़ते इन मौसमों के संग ख्वाब भी टूट गए और बिखर गई चांदनी।

पंछियों की टोलियां रवां हैं अपने सफर पे, और दौराने सफर अपनी परवाज लिए आकाश की बुलंदियों को छूना ही ये अपना लक्ष्य मानते हैं। इनके लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखते हैं, इनको बस उड़ने से मतलब है। बादलों में गुम हो जाना शायद इनका मकसद रहता है। फिर धीरे धीरे ये अपना सफर तय कर लौट आते ही जमीन पर इन पीले फूलों के खेतों में शबनमी बूंदों से नहा लेते हैं।

तुझे जाना है फलक पर अब, पर मिलोगी शायद तुम वहां, धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर। धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर, और चाहती ही बेअसर। अब यहां प्यार चुभता है क्योंकि फासले ही दरमियां, तभी मोहब्बत बेमानी है। सुरीली यादें ही जावेदा जो बह जाती हैं अक्सर मेरे साथ।

चांदनी रातों के बाद एक ऐसी ही सुबह का इंतजार रहता है जो मेरे लिए गुलाबी सुबह बन जाए। आओ, आओ तुम्हें इन बर्फीली हवाओं का एहसास कराएं। चल मेरे साथ कोहसारों के उस पार जहां पल भर के लिए अब मर जाएं।

आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब आज के लिए बस इतना ही, चाहेंगे आपसे इजाजत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 11। कार्यक्रम को एडिट रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।

आप सभी को मेरी तरफ से यानी किरणी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सुरों के इस सिलसिले सरगम में आपका स्वागत है। आज हम यादों की उन गलियों में घूमने निकले हैं जहां हर गाने एक कहानी सुनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हसीन सफर। शुरुआत करते हैं उस पुकार से जो दिल की गहराइयों से निकली है, फिल्म गुमराह का ये नगमा जिसे साहिर लुधियानवी ने लिखा, रवि जी ने संगीत दिया और महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज़ दी। गाने के बोल है, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारी।

मोहब्बत की राहों में सहारा ढूंढती एक आवाज, सुनिए फिल्म हमसफर से मजरू सुल्तानपुरी के लफ्ज, असलम शफी का संगीत और आशा भोंसले जी की आवाज में दिल के सहारे कैसे प्यार करें।

वक्त बीतता है पर यादें वही रुक जाती है। साहिर साहब ने लिखा, जावेद ने धुंधी और लता मंगेशकर ने गाया। गाने के बोल है, जाने वाले आजा तेरी याद सताई।

अब पेश है फिल्म साजन का वो धुआंधार गीत, जिसे समीर ने पिरोया, नदीम श्रावण ने संगीत दिया और एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाया। और गाने के बोल है, बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम।

0: लीजिए पेश है फिल्म कश्मीर की कली का ये झूमता नगमा, जिसे SH बिहारी ने लिखा, OP नायर की धुन और मोहम्मद रफी का मस्ताना अंदाज। गाने के बोल है, तारीफ करूं क्या उसकी।
1: ये चांद सा रोशन चेहरा

अगले गाने के बोल है बीगा बीगा प्यार का समा। ये फिल्म सावन से है। इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा, श्याम जी घनश्याम जी ने संगीत दिया और मोहम्मद रफी ने गाया।

प्रकृति और प्रेम का एक अनोखा संगम सुनिए फिल्म आदमी और इंसान से। साहिर का कलाम, रवि का म्यूजिक और आवाज दी है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने, और गाने के बोल है नीले पर्वतों की धारा।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। जारी है कार्यक्रम सरगम। अब जिक्र उनका जिन्हें दुनिया पंचम कहती है। फिल्म यादों की बारात से आरडी बर्मन का म्यूजिक, मजरू के बोल और आशा रफी की जुगलबंदी। गाने के बोल है चुरा लिया है तुमने।

जिंदगी का फलसफा और फिल्म आनंद, योगेश जी के अल्फाज, सलील चौधरी की धुन और मुकेश जी की वो दर्द भरी आवाज। गाने के बोल है कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

इश्क में दीवानगी लाजमी है। फिल्म कटी पतंग के लिए आनंद बख्शी ने लिखा, आरडी बर्मन ने संगीत दिया और किशोर कुमार ने गाया। गाने के बोल है, प्यार दीवाना होता है।

नज़ाकत और पुरानी दिल्ली की गलियां, फिल्म पाकीज़ा, संगीत नौशाद साहब का, बोल मजरू सुल्तानपुरी के, और आवाज़ दी है लता जी ने। गाने के बोल है इन्हीं लोगों ने।

कार्यक्रम का अगला गाना है आशिकी का ये सुपरहिट गाना, समीर के बोल, नजीम श्रवण का म्यूजिक और कुमार सानू की आवाज़। गाने के बोल है बस एक सनम चाहिए।

0: प्रोग्राम की आखिरी कड़ी में सुनिए एक ऐसा नज़्म जो दिल को छू जाए। फिल्म कभी कभी का गाना साहिर के लफ्ज, खयाम की धुन और मुकेश की आवाज़। गाने के बोल है कभी कभी मेरे दिल में। सुरों का ये कारवां आज यही थमता है। उम्मीद है आपकी रेडियो दोस्त कितनी की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, संगीत सुनते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 11, जिसमें आपने पुराने हिंदी फिल्मों के गीत सुने। कार्यक्रम को रिकॉर्ड और एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।
1: You are listening 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: पेश है कार्यक्रम माँ अनमोल, एपिसोड 2। पेश करेंगे आरजे सेजल और भरत सुपोरी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आपका स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में, जो खास तौर से डेडिकेटेड है सभी मदर्स को। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। माँ के बारे बहुत लिखा गया है, लेकिन अभी भी उनके प्यार को बयां करने के लिए शब्द कम है हमारी शब्दावली में।
2: माँ होना ही अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास है। अपने अंदर बढ़ते जीवन को महसूस करना, गर्भ में उन नन्हे हाथों पैरों की हलचल होना, फिर उन नन्हे हाथों को अपने चेहरे पर महसूस करने का एहसास अलग ही होता है।
1: उन किलकारियों को सुनने का इंतजार तो सभी को होता है, लेकिन उन किलकारियों को दुनिया में सुरक्षित लाने का एहसास सिर्फ माँ को। इसलिए माँ का एक दिन नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन ही माँ का है।

0: सिर्फ माँ बनने पर ही ममता का एहसास नहीं होता, कहीं ना कहीं हर औरत में पहले से ही ममता समाई होती है। चाहे वह आपकी बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, जब भी आप दुख या किसी तकलीफ में हो तो अपने प्यार, ध्यान या प्यार भरे गुस्से से ममता झलका ही देती है।
1: शायद इसीलिए बहन, भाभी, दादी, नानी, बुआ और खास तौर पर मामा, इन सभी रिश्तों को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन वो दर्जा भी हासिल उन्हें निभाने से ही होता है।
0: कहते हैं माँ की एक दुआ हजार दुआओं के बराबर होती है, और दिन में ना जाने वो कितनी ही दुआएं हमारे लिए करती है, और आखिरकार भगवान भी उन दुआओं को टाल नहीं पाता, और इसीलिए शायद जब तक माँ का आंचल होता है हर दिन जन्नत सा लगता है।

0: माँ दुनिया में या हमारी जिंदगी में वो शख्स है जिससे जितना भी नाराज हो या लड़ लो, वो कभी भी खफा नहीं होती। लेकिन हाँ, जब वो नाराज या गुस्सा हो तो उसे मनाना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन वो दिन, वो घर और ये दुनिया उसके बिना अधूरी सी लगती है।
1: बिन कहे वो सब समझ जाती है, बिना छुए हमारा दर्द महसूस कर लेती है। जो चीज हमारी आँखों के सामने होते हुए भी नहीं मिलती, उससे पलक झपकते ही ढूंढ लेती है। माँ जादूगर होती है, हर गम चुटकी बजाकर गायब कर देती है। जब कुछ खाने का मन ना हो तो अपने हाथों के स्वाद से पेट भर देती है।
0: कुछ भी कहो, माँ होती तो कमाल है। इसीलिए भगवान भी धरती पर आते हैं, तेरा प्यार पाने को, बच्चा बन तेरी गोद में सो जाने को, तेरे हाथ का खाना खाने को, नटखट शैतानियां कर तुझे हंसाने को, डर के तेरे आंचल में छुप जाने को, शरारत कर तुझसे डांट खाने को, निस्वार्थ प्रेम की शिक्षा तुझसे पाने को।

0: आज का ये फलसफा था माँ के नाम, और ये जिंदगी तो है और थी उसी के नाम। अब इस फलसफे का अंत करते हैं एक छोटी सी कविता के साथ जो माँ के नाम है।
1: जब भी दुख के साए ने घेरा, माँ के आंचल ने मुझे समेटा। जब भी पकड़ी गलत राह, तो खींच मुझे सही राह पर भेजा। जब गलत सही का बोध नहीं था, तब सही का भाव तूने समझाया। जब पल्लू तेरा छोड़ बाहर निकला, तो तेरा दिया ज्ञान समझ में आया। जब देखी पत्थर सी दुनिया, तब तेरे आंचल में समाया संसार समझ में आया। जब लोगों ने जोड़े मतलब से नाते, तब तेरी डांट के पीछे का प्यार नजर आया। जब छोड़ा तूने इस संसार में अकेला, तब माँ तेरे नाम का मतलब समझ में आया।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अम्बाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है, आंखों ही आंखों में

0: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, Hamsafar Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
1: Toichu Bozan, Namat Asharya Sifar, Radio Vitasta, Hamsafar Zindagi Hund.
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: तारों से भरी रात हो या दलती हुई शाम, गीतों के बहाने भेजते हैं दिल का पैगाम। दिलों से दिलों को जोड़ने का ये सिलसिला है खास, रेडियो वितस्ता से पहुंचते हैं हम आपके पास। रेडियो वितस्ता से पहुंचते हैं हम आपके पास।
1: वाह, क्या खूबसूरत शुरुआत है। रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज के सभी प्यारे श्रोताओं को अन्नू का प्यार भरा नमस्कार।
0: आपने ट्यून इन किया है रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। मैं आपका रेडियो हमसफर भरत सुपुरी, मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपके और हमारे सबसे मनपसंद शो का, यानी आपकी फरमाइश का। और इस मंच की सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ हम सिर्फ आपकी पसंद के गाने नहीं बजाते, बल्कि हर एक फरमाइश में छिपी आप श्रोताओं की भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं। हमारी कोशिश बस यही रहती है कि इन नगमों के सहारे दिलों को दिलों से जोड़ा जा सके।
1: सही कहा भारत जी, रेडियो की इन रेशमी तरंगों के जरिए हम आप सभी को सिर्फ श्रोता नहीं, बल्कि पूरे रेडियो वितस्ता परिवार का एक अहम हिस्सा मानते हैं।
0: भले ही ये हमारा सामुदायिक रेडियो मुख्य रूप से अम्बाला की बातें, यहाँ के सरोकार और अपनों की मिठास समेटे हुए हैं, लेकिन इसकी गूंज अब किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से आज रेडियो वितस्ता पूरे विश्व में, दुनिया के कोनों कोनों में सुना जा रहा है।
1: तो चाहे आप अम्बाला की किसी गली में हो या सरहदों पार किसी दूर देश में, आप सीधे हमारे दिल से जुड़े हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आपकी भेजी हुई फरमाइशों का सिलसिला, और लेती हूँ पहली फरमाइश जो आई है धनोरी तेलीवाला से। भेजने वाले श्रोता हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म कभी कभी से गीत। गीत के बोल हैं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

जी हाँ श्रोताओं, सुनाते हैं आपको एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है दयालबाग अंबाला छावनी से। भेजे वाले श्रोता है हनी और अनिल, ये सुनना चाहते हैं फिल्म मेरा गांव मेरा देश से गीत। गीत के बोल है हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। आइए प्रस्तुत है इनका ये पसंदीदा नगमा।

आइए लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है समस्तीपुर बिहार से। भेजने वाली सखियां हैं मीरा सिंह, ज्योति सिंह और रोहतास बिहार से, सोनम सिंह, अनामिका सिंह। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म गंगा जमुना से गीत। गीत के बोल हैं दो हंसों का जोड़ा। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं इनका मनपसंद नगमा।

जी श्रोतो, आप सभी की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव मंदेबर यमुना नगर से भेजने वाले श्रोता है रणबीर जगमाल फूल सिंह समेशर अंगराज और विकास पंजेटा। ये सभी सुनना चाहते हैं एक हरियाणवी गीत फिल्म चंद्रावल से। और गीत के बोल है जीजा तू काला मैं गोरी घनी। इस गीत को आवाज दी है धीरज कुमार और विजया मजुमदार ने। आइए प्रस्तुत है ये हरियाणवी गीत।

और इसी के साथ लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म सिकंदर ए आजम से गीत। गीत के बोल है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। आइए सुनते हैं इनका ये मनपसंद गीत।

बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग

इसी के साथ अब समय है अगली फरमाइश का, जो आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। साथ ही मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर, ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म बरखा से गीत, और गीत के बोल हैं तड़पाओगे तड़पालो। इस गीत को अपनी वाणी से सजाया है लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

सुनाते हैं आप सभी को एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव जुगुड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता है रणधीर बांगड़। ये सुनना चाहते हैं फिल्म मिलन से गीत। गीत के बोल है सावन का महीना। गीत को आवाज दी है मुकेश और लता मंगेशकर जी ने। रणधीर बांगड़ के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन और मनराज। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये मनपसंद नगमा।

अगली फरमाइश हम प्रस्तुत करते हैं जो हमारे पास आई है अमाला छावनी से और भेजे वाले श्रोता है हनी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म शोर से गीत, गीत के बोल है एक प्यार का नगमा है। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी और मुकेश जी ने। आइए प्रस्तुत है इनका ये मनपसंद नगमा।

इसी के साथ लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है सेक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईशानी। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म अनुपमा से गीत। गीत के बोल हैं, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार। इस गीत को अपनी वाणी से सजाया है लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं इन सबका ये फरमाइशी गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जारी है। कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप भी इस कार्यक्रम को इस समय सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप कोई पुरानी हिंदी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, पंजाबी या हरियाणवी गीत सुनना चाहते हैं, आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर। आपको लिखना होगा अपना नाम, अपने दोस्तों का नाम और आप कहां से हमें लिख रहे हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही लेता हूं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अंबाला से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधू। ये सुनना चाहते हैं फिल्म शिकार से गीत। गीत के बोल है देखा है तेरी आंखों में प्यार। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने और बंशीलाल संधू के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधू, जसबीर सिंह संधू, वरनीत कौर, अवनीत कौर संधू और पूरा संधू परिवार। साथ में ये लिखते हैं कि प्रोग्राम पेश करने वाले साहिबान को नमस्कार। हम सभी की ओर से, टीम रेडियो वितस्ता की ओर से, आप सभी को बहुत ही प्यार और प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रस्तुत करते हैं इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

और आप सभी के लिए एक और फरमाइश जो आई है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से। भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल। ये सुनना चाहते हैं फिल्म कर्तव्य से गीत। गीत के बोल हैं, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। रवि कुमार राहुल जी के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। आइए सुनते हैं इनका ये मनपसंद फरमाइशी गीत।

0: सज गई हैं मिठाइयों की दुकानें और तैयार है रंग बिरंगी राखियां, क्योंकि आज दिन है भाई बहन की नोकझोंक और ढेर सारी मस्ती और बेशुमार प्यार को सेलिब्रेट करने का। रेडियो वितस्ता परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आज के इस खास दिन को बनाइए और भी स्पेशल अपनों के साथ।
1: प्यार, विश्वास और अटूट बंधन का त्योहार है रक्षाबंधन, जो आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कलाई पर सजी एक छोटी सी रेशम की डोरी सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि बहनों का दुलार और भाइयों का सुरक्षा संकल्प है। रेडियो वितस्ता की पूरी टीम की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके रिश्तों की यह मिठास हमेशा बनी रहे, और हमेशा सुनते रहिए रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz पर। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। तो कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम लेते हैं आखिरी फरमाइश, जो रक्षाबंधन के साथ जुड़ी है। ये गीत हम सुनाने जा रहे हैं फिल्म अनजाना से। गीत के बोल है, हम बहनों के लिए मेरे भैया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने, और ये गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं हमारी रेडियो संचालिका कृष्णा की ओर से। इस गीत के साथ हम आपको छोड़े चले जा रहे हैं और आपसे चाहेंगे अनुमति, ताकि अगले प्रोग्राम को तैयार कर आपके साथ फिर रूबरू हो सके। एक बार फिर रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
0: और मेरी तरफ से भी आप सभी प्यारे श्रोताओं को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर दिखाओ।

हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शम्मी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शम्मी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मानी।

फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: प्यार।
1: अय्या सुकु सुकु,
0: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु।
2: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी, अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
0: हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641310 पर।
2: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं? मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: लता मंगेशकर एक है रेडियो मितस्ता हम सफर जिंदगी का
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।

ये है रेडियो विदस्तम, हम सफर जिंदगी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत के पर्व और आज हम बात करेंगे भाई बहन के पर्व यानी रक्षाबंधन की। मैं रेडियो सखी किरणी इस सफर में आपके साथ रहूंगी। ये आज का कार्यक्रम उन वीर जवानों को समर्पित है जो इस समय देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उनको और सारे देशवासियों को रेडियो विदस्ता की ओर से और मेरी ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी रक्षाबंधन।

रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो रक्षा प्रदान करता हो। रक्षाबंधन के दिन बहनों के चेहरों पर खुशी झलकती है। भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, किसी के शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है।

भाई और बहन की बॉन्डिंग पूरी तरह से यूनिक होती है। भारत जिसको संस्कृतियों की भूमि भी माना जाता है, वही तो इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दी गई है। इसकी इतनी ज्यादा महत्व है कि इसके एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है।

इस त्योहार में भाई बहन के प्यार को एक ट्रेडिशन की तरह मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक स्पेशल हिंदू त्योहार है जिसे कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में जैसे कि नेपाल में भी भाई बहन के प्यार का प्रतीक मानकर खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व रक्षाबंधन को श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। इस मौके पर एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। वही वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वही भाई भी अपनी बहन के बदले में कई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतीक्षा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपनी बहन की रक्षा हमेशा करेगा। साथ में वो भगवान से अपनी बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की भी मनोकामना करता है।

राखी का जो फेस्टिवल है वो पुराने जमाने से ही हमारे भारत में मनाया जाता है। राखी त्योहार की सबसे पुरानी कहानी सन 300 BC में हुई थी, उस समय जब अलेक्जेंडर ने भारत जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आया था। उस समय भारत में सम्राट पूर्व का काफी बोलबाला था, जहाँ अलेक्जेंडर ने कभी किसी से भी नहीं हारा था। उन्हें सम्राट पूर्व को सेना से लड़ने में काफी दिक्कत हुई। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला, तब उन्होंने सम्राट पूर्व के लिए एक राखी भेजी थी जिसे वो अलेक्जेंडर को जान से न मार दे। वही पूर्व ने भी अपनी बहन का कहना माना और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया था। एक और कहानी है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था। अपनी राज को बचाने के लिए राखी उस समय भी प्रचलित थी, जिसमें भाई अपने बहनों की रक्षा करता है। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी, वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजा उनकी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने भी अपने बहन की रक्षा के हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दिया, जिसके बाद में बहादुर शाह को सेना को पीछे हटना पड़ा था।

एक और कहानी है इंद्रदेव जी की। भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बाली ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, तब देवताओं के राजा इंद्र को काफी नुकसान पहुंचा था। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सच्ची से रहा नहीं गया और वो विष्णु जी के करीब गई इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तब प्रभु विष्णु ने एक धागा सच्ची को प्रदान किया और कहा कि वो इस धागे को जाकर अपने पति के कलाई पर बांध दे। और जब उन्होंने ऐसा किया तब इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राजा की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज से परेशान होने लगी क्योंकि विष्णु जी अब और वैकुंठ पर नहीं रहते थे। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वही बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को ये नहीं पता था कि वो औरत और कोई माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दिया। इस पर माता बलि ने विष्णु जी को उसके साथ चलने के लिए कहा और उसने अपनी राखी की लाज रखी। महाभारत में भी राखी की बहुत ज्यादा महत्व है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह सलाह दी कि महाभारत की लड़ाई में खुद को और अपनी सेना को बचाने के लिए उन्हें राखी का जरूर से उपयोग करना चाहिए युद्ध में जाने से पहले। इस पर माता कुंती ने अपनी नाती के हाथों में राखी बांध दी थी। वही द्रौपदी ने कृष्ण के हाथों राखी बांध दी थी। आइए सुनते हैं एक प्यारा

को लेकर परेशान थे कि उनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने के लिए जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश जी को संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा अपने शक्ति का उपयोग कर। वही ये मौका रक्षण बंधन ही था जब दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त हुई। हिंदू धर्म में ये त्योहार काफी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। वही इसे भारत के उत्तरी प्रांत और पश्चिमी प्रांतों में ज्यादा मनाया जाता है। इसके अलावा भी दूसरे देशों में भी इसे मनाया जाता है, जैसे कि नेपाल मॉरिशस में भी मनाया जाता है। जैन धर्म में उनके जैन पंडित भक्तों को पवित्र धागा प्रदान करते हैं। सिख धर्म में भी इसमें भाई और बहन के बीच मनाया जाता है। वही इसे रखड़ी या रखरी कहा जाता है। ग्रंथों में देखें तब आप पाएंगे कि रक्षाबंधन को पुण्य प्रदायक माना गया है। इसका मतलब कि इस दिन अच्छे कार्य करने वालों को काफी सारा पुण्य प्राप्त होता है। रक्षाबंधन को विष्क तारक का विष्क नाशक भी माना जाता है। वहीं इसे पाप नाशक भी कहा जाता है, जो कि खराब कामों को नाश करता है। कच्चे धागों से बनी पकी डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र धुआं है राखी। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता है, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। मेरी तरफ से और रेडियो विकासतर की तरफ से आप सबको एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह है रेडियो विकासतर।

आपको मेरा आदाब। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत बन गई। मैंने तुम्हारे चेहरे से इसे चुरा लिया है। यहां इन घने अब्र आलूद मौसमों में तुम छिप जाते हो और कोसीकजा का दामन थाम लेते हो। अक्सर बादल के टुकड़े दयारों में बदल जाते हैं और अनदेखी बस्तियों को राहत बख्शते हो, हरारत से महफूज रखते हो। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत क्यों बन गई।

मौसम आए मौसम जाए, पर सदियों से तुम न आए। तुम आकाश थे रोशनियों के, सफर में हम सफर थे मील के पत्थर थे। इन प्यार की सरहदों के निगहबां थे, मेरी हर कोशिश की शुरुआत थी, मेरी हर सुबह की पुकार थी। कितने ही मौसम आए, कितने ही मौसम जाए, क्या कभी तुम लौट आए।

वो था पानी का बुलबुला जो बनता रहा मिटता रहा। मिटता रहा बनता रहा, कभी हथेली पर ठहरा नहीं, कभी जमीन पर उड़का नहीं, कभी बादल बना तो कभी शबनमी बूंद। मैंने उसे तैरते पानियों में बनते मिटते बिखरते देखा, इन खामोशियों में फना होते हुए देखा। शायद वो गुजरे कल का तस्वीर था जो कभी लौटता नहीं, जो कभी लौटता नहीं।

मैंने सुना है यही से गुजरता था वो जो कभी मेरे छत पे आकर तारों को गिनता था, चांद की परछाई से लिपटता था, नदामत भरी आंखों से मेरी बेबसी, मेरी लाचारगी को अपने पास महफूज रखने की कोशिश में हमेशा से ही मसरूफ। अपने दुपट्टे से अपने ही चेहरे को ढकना, ये उनकी फितरत में शामिल है। दिल के ठहरे हुए पानी में पत्थर ना फेंको, चांद का अक्स बनाया है, बिखर जाएगा।

एक आहट क्यों आकर रुक गई मेरे आंगन में, एक परछाई क्यों मुझे छूने को है बेकरार बेताब। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक एहसास आज भी है पलता मेरे वजूद मेरे जीवन के हर हिस्से में, कि कोई तो है, कि कोई तो है जो अभी भी रिश्तों को बरकरार बनाए रखे हुए हैं।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं, और आशा करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे, और अपना फीडबैक भी आप ज़रूर हमें भेजेंगे अपने सुझावों के साथ हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो हम इस के आज के इस समापन पर हम आपको नोट कराएंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 5 सेकेंड। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। दिन भर हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज का हमारा ये प्रसारण आपको पसंद आया होगा और हमारी बातों ने आपके दिन को थोड़ा और रोचक बनाया होगा। अब भारी है आज के प्रसारण को विराम देने की, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर चर्चा करते हैं आज के विशेष दिन की। आज का दिन रेडियो जगत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज है। ठीक आज ही के दिन 28 अगस्त 1922 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर स्थित रेडियो स्टेशन वीफ WEAF से दुनिया का पहला व्यावसायिक रेडियो विज्ञापन प्रसारित हुआ था। यह विज्ञापन एक रियल एस्टेट कंपनी का था, जिसने फ्रांस इलाके में अपार्टमेंट्स की बिक्री के लिए महज 10 मिनट का समय खरीदा था, और इसी छोटे से प्रयोग ने रेडियो प्रसारण की दुनिया में एक नई क्रांति की नींव रख दी। उस दिन से पहले रेडियो के प्रसारण को केवल सूचना और मनोरंजन का माध्यम समझा जाता था, लेकिन इस विज्ञापन ने यह साबित कर दिया कि रेडियो एक शक्तिशाली व्यावसायिक मंच भी बन सकता है। धीरे धीरे इसी सोच ने पूरी दुनिया में विज्ञापन उद्योग को एक नई दिशा दी, और आगे चलकर टेलीविजन व डिजिटल विज्ञापन जैसे माध्यमों की भी बुनियाद बनी। आज जब हम अपने प्रिय रेडियो वितस्ता पर बैठकर आपसे बातें करते हैं, तो ये भी उसी लंबी और गौरवशाली परंपरा की एक कड़ी है, जो 100 साल पहले एक छोटे से प्रयोग से शुरू हो गई थी। मैं यहां पर रेडियो वितस्ता पर सभी अंबाला वासियों के व्यवसायियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी अपना व्यवसाय इस रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से करें। हमारी पहुंच अंबाला के लगभग सभी श्रोताओं तक है, सभी वासियों तक है, और आपकी बात इस रेडियो के माध्यम से बहुत ही नॉमिनल शुल्क पर आपकी बात को हम पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपको संपर्क हमें करना होगा हमारे मेल आईडी radiovitasta@gmail.com पर, या हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो अभी कुछ क्षणों के बाद हम आपको नोट कराएंगे। आप अपने पास पेन और पेपर या मोबाइल रख लीजिएगा, जिस पर आप हमारा नंबर नोट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो गौरवशाली इतिहास 100 साल का है, इसमें अंबाला के सभी लोग और व्यवसायी अपना योगदान जरूर देंगे। रेडियो सिर्फ आवाजों का माध्यम नहीं, बल्कि विचारों, संस्कृति और समाज को जोड़ने वाला सेतु है, और ये वजह है कि आज भी तमाम नए माध्यमों के बीच रेडियो की अपनी एक अलग और अनमोल जगह बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विषय, और तो आइए रेडियो के इस ऐतिहासिक सफर को नमन करते हुए वितस्ता के नाम एक शेर के साथ आज के प्रसारण को देते हैं विराम। आज की पंक्तियां हर रोज की तरह आपके लिए मैं समर्पित करता हूं, और आज की पंक्तियां यूं हैं। वितस्ता के तट पर बहती हर लहर एक कहानी है, वितस्ता के तट पर बहती हर लहर एक कहानी है, इसके जल में बसी हमारी सदियों की निशानी है। आवाजों का ये सफर सदियों से यूं ही चलता रहे, आवाजों का सफर सदियों से यूं ही चलता रहे, हर दिल में उम्मीद का ये दीपक यूं ही जलता रहे, हर दिल में उम्मीद का ये दीपक यूं ही जलता रहे।
जी हाँ दोस्तों, ये था आज का टॉपिक और आज की पंक्तियां। और जाते जाते आपको जल्दी से कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूँ। कल 29 अगस्त 2026 शनिवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत। 7:05 पर कार्यक्रम सरगम एपिसोड 4 पेश करेंगे आरजे किरनी। और 8:30 किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट कल एपिसोड 7 आप सुन पाएंगे। शीर्षक होगा सही चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। 9:30 होगा कार्यक्रम पहला प्यार एपिसोड 2 पेश करेंगे भारत सोपोरी। और 10 बजे होगा वितस्ता गीतमाला कार्यक्रम एपिसोड 2 पेश करेंगे नरेश शर्मा। संगीत की सभा जारी रहेगी। 2 बजे आप सुनेंगे कृषि समाचार और 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत। 6:30 शाम में गजल और 7 बजे वितस्ता गीतमाला एपिसोड 6। और ये कार्यक्रम आधारित है मीना भट्ट सिद्धार्थ के कविताओं पर, पेश करेंगे भारत सोपोरी। 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है सफर रूहों का। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक अपनी जानकारी हमें भेजेंगे। अगर आप अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव से अंबाला की जनता को मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो आप जरूर हमें अपने बारे में भी लिखिए। हम आपको आमंत्रण देंगे, आपकी आवाज को रिकॉर्ड कर सभी अंबाला वासियों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर दीजिए, हमारा नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई बातों और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रेडियो वितस्ता सुनते रहिए हर दिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक। रेडियो वितस्ता, जहां हर सुर हर विचार वितस्ता की लहरों की तरह बहता ही रहता है। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।